0: SBS South Asian.
1: Music MG. तुझे बीच सड़क में रोके दूंगा मौके देखने के मेरे शौके शौके इट्स ओके तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़कियों के।

देश दुनिया दी खबरां तो बाद एक बार फिर तो मैं शायना कालरा बड़ा ही निग्गा जिहा स्वागत करदी हाँ तुहाडे सारिआं दा तुहाडे अपने SBS पंजाबी प्रोग्राम विच। दोस्तों, एक वड्डी खबर दा रहण सहण दी लागत भाव के कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस ते वधदीआं तेल कीमतां वी एक लंबे समय तो बणीआं होईआं ने, पर अजिहे विच साढ़े तुहाडे वर्गे जिहड़े आम लोग ने वह अपनी जिहड़ी बजट है वह किवें करन, इस वधदियां हुईआं कीमतां दे नाल नाल पैसिआं दी संभाल किवें कीती जावे, इस बारे खास रिपोर्ट लैके आए ने साढ़े साथी पत्र।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online, and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS Hindi के दैनिक रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है. ये है 28 मई 2026 की एक भीगी सी शाम और आप सभी को वृषाली जैन का प्यार भरा नमस्कार. कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद मस्त होंगे. आज का SBS Hindi कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों कैमरागिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी याद करते हैं जिनकी धरती पर ये कार्यक्रम आज सुना जा रहा है. दोस्तों, इस डार्क और डैम्प

टाइप के मौसम में मेरे पास आपके लिए कुछ बढ़िया खबर है भाई। देखिए, है जवानी तो इश्क होना है फिल्म के 5 डबल पासेस मेरे पास हैं और इनको जीतने के लिए आपको देना है एक छोटे से सवाल का जवाब। वो ये है कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है। अपने नाम के साथ सही जवाब और ईमेल एड्रेस हमें जरूर भेजिए 04397997667 पर और आप जीत सकते हैं इस मूवी का एक डबल पास। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे आज के संक्षिप्त समाचार, जिसके बाद चर्चा करेंगे विक्टोरिया की प्रीमियर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां चर्चा हुई संभावित भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा की। इसके बाद आपके लिए लेकर के आएंगे फ्यूल इन फोकस नाम का एक ऐसा सेगमेंट, जहां चर्चा करेंगे ईंधन पे पैसे बचाने की। फिर बात करेंगे पॉलिटिकल ग्रीफ की, क्या होता है पॉलिटिकल ग्रीफ, और अंत में चर्चा करेंगे इंडिजिनस टूरिज्म की, क्योंकि चल रहा है रिकंसिलिएशन वीक। तो आप अगर जीतना चाहते हैं है जवानी तो इश्क होना है फिल्म के डबल पासेस, तो संदेश भेजिए कि कौन है इस फिल्म के डायरेक्टर 04397997667 पे। संदेश में आपका ईमेल एड्रेस और आपका नाम होना जरूरी है। जब तक आप मुझे अपने सही जवाब भेज रहे हैं, आइए मैं आपको सुनाती हूँ आज के संक्षिप्त समाचार। पेश है आज के संक्षिप्त समाचार विशाली जैन के साथ। फेडरल सरकार के $2 बिलियन के मुकदमे की घोषणा के बाद अमेरिकी कंपनी 3M ने कहा है कि वे कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना बचाव करेगी। ये बयान तब आया है जब फेडरल सरकार ने फायर फाइटिंग फोम में तथाकथित फॉरएवर केमिकल्स से जुड़े प्रदूषण को लेकर 28 रक्षा स्थलों पर $2 अरब का मुकदमा दायर किया। गुरुवार 28 मई 2026 को फेडरल अदालत में कार्यवाही की घोषणा करते हुए अटॉर्नी जनरल मिशेल रोलैंड ने आरोप लगाया कि बहुराष्ट्रीय कंपनी ने जानकारी छिपाई और अपने एक उत्पाद के बारे में गलत जानकारी दी। एक बयान में 3M ने कहा कि उसने ऑस्ट्रेलिया में 2 दशक से अधिक समय पहले ही इस अग्निशमन फोम की बिक्री बंद कर दी थी और उसने ऑस्ट्रेलिया में कभी PFAS रसायनों का निर्माण नहीं किया। मिशेल रोलैंड ने कहा कि रक्षा स्थलों पर PFAS प्रदूषण की वजह से अब तक करदाताओं को लगभग $1 बिलियन का खर्च उठाना पड़ा है और ये कानूनी कार्रवाई उन खर्चों की भरपाई के उद्देश्य से की जा रही है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्सों में डिप्थीरिया के 250 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिनमें 90% से ज्यादा मरीज अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर समुदायों से हैं। करीब 60% मामले नॉर्दर्न टेरिटरी में दर्ज किए गए हैं, जबकि अधिकांश अन्य मामले किम्बली क्षेत्र में सामने आए। अब तक इस आउटब्रेक से जुड़ी एक मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दूसरी मृत्यु का भी जिक्र किया गया है, लेकिन मार्क बटलर ने है कि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यह आउटब्रेक अभी गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है और टीकाकरण, इलाज तथा सामुदायिक जागरूकता के लिए अतिरिक्त फंडिंग उपलब्ध कराई जा रही है। और नेशनल्स ने प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी से नेगेटिव गियरिंग और कैपिटल गेन्स टैक्स में प्रस्तावित बदलावों को लेकर चुनाव कराने की मांग की है। ये बदलाव फेडरल बजट में इंगित किए गए थे। इस बीच सरकार इन बदलावों को लागू करने के लिए संसद में विधेयक पेश कर रही है। इसमें $250 का वर्किंग ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफसेट भी शामिल है। उम्मीद जताई जा रही है कि ऑस्ट्रेलियन ग्रीन्स के समर्थन से ये सुधार संसद में पारित हो जाएंगे। हालांकि दोनों गठबंधन दल इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। नेशनल्स के नेता मैट कैनवन ने संसद भवन के बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए चुनाव कराने की मांग दोहराई थी। वहीं क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स समेत पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में तेज आंधी तूफान और भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़, सड़क बंद होने के कारण और यात्रा में बाधाएं देखी जा रही हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दोनों राज्यों में अब तक लगभग 500,000 बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। ब्यूरो ऑफ मीटरोलॉजी ने कहा है कि गंभीर मौसम की चेतावनियां अब भी जारी हैं और पूर्वी तट तथा तस्मानिया के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि मौसम प्रणाली के समुद्र की ओर बढ़ने के साथ सप्ताहांत तक हालात सुधरेंगे। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका ने कथित तौर पर ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर नए हवाई हमले किए हैं। यह हमला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास बढ़ते तनाव के बीच किया गया। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास बंदरगाह शहर के पास हुए इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का दावा है कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। इस बीच कुवैत ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने रात भर में मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण

0: कारण वैश्विक तेल कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई है। और अब अंत में खबरें भारत से। भारत के अहमदाबाद में इबोला वायरस के संदिग्ध मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। कांगो से आए 37 वर्षीय कारोबारी समेत 4 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। उनके सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे गए हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पंचेरिया का कहना है कि अब तक इबोला संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है और घबराने की जरूरत नहीं है। मरीज की हालत स्थिर बताई गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में कांगो और युगांडा में फैले इबोला आउटब्रेक को वैश्विक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया था। एहतियात के तौर पर गुजरात सरकार अहमदाबाद एयरपोर्ट पर युगांडा, कांगो और दक्षिण सूडान से आने वाले यात्रियों की सघन जांच कर रही है। इसी के साथ 28 मई 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। संक्षिप्त समाचार के बाद अब आइए चर्चा करते हैं। विक्टोरियन प्रीमियर जेसिंटा एलन ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की उसके बारे में। बीते दिन हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में SBS हिंदी की टीम ने भी शिरकत की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य से जुड़े किन मुद्दों पर चर्चा की गई और प्रीमियर ने मल्टीकल्चरल मीडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित ऑस्ट्रेलिया यात्रा से जुड़ी क्या जानकारी दी, इसको आइए सुनते हैं नताशा कॉल की इस रिपोर्ट में।
1: कल विक्टोरिया के प्रीमियर जेसिंटा एलन ने अपने कार्यालय में बहुसांस्कृतिक पत्रकारों के साथ एक बैठक की, जिसको कवर करने SBS हिंदी की टीम भी मौजूद थी। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा किए गए प्रमुख विषय कौन से रहे, सुनिए संक्षिप्त में। अपनी शुरुआती संबोधन में जेसिंटा एलन ने राज्य के बजट से जुड़े कुछ अहम मुद्दों को रेखांकित किया।
2: My government is

0: He travels globally as an international leader, as a leader of a significant country and economy on the global stage, and we really look forward to the opportunity to welcome him here to Melbourne and Victoria.
1: तो क्या प्रस्तावित मोदी दौरे के दौरान विक्टोरियन सरकार भारत के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट करने वाली है? इस सवाल पर प्रीमियर ने बताया.
0: Yes, so we have here in Victoria a great opportunity to leverage off the free trade agreement that the federal government struck with India a couple of years ago now, and going back to some of the earlier questions. There is also a very strong relationship between Prime Minister Anthony Albanese and Prime Minister Modi as well. As we recall, Prime Minister Albanese's visit to India a couple of years ago was very well received. And so we will continue to further strengthen our economic relationships with India, particularly in that area of education. I also know sport and how we, as the major events capital of Australia, host major sporting events is something of interest and a priority to the Indian government as well, which is why when I was in India, I met with the Minister for Sport during my time there. So we'll continue to look at more ways to further strengthen those economic relationships, remembering, of course, we've got this powerful platform from which we can do so, which is the Indian diaspora here, who really do provide us with a great foundation for that relationship.
1: तो आप सुन रहे थे विक्टोरियन प्रीमियर जसिंटा एलन को, जो हमें अपनी सरकार, राज्य बजट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे से जुड़ी नवीनतम जानकारी दे रही थीं।
2: और इस अंश के बाद कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के उस पार करेंगे चर्चा कि भाई क्या है पॉलिटिकल ग्रीफ, इस बारे में और बातचीत ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले याद दिला दूं कि हमारे पास है 5 डबल पासेस है जवानी तो इश्क होना है फिल्म के। आपको मुझे बताना है कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, अपने नाम, सही जवाब और ईमेल एड्रेस के साथ हमें संदेश भेजिए 04397997667 पर। आपके संदेशों के इंतजार में हूँ, छोटा सा अंतराल और फिर हाजिर होती हूँ। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी पर।
3: SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं। आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियाँ। SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर।
4: SBS South Asian plays hit.

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें।
2: Hi, I'm Janice Peterson from SBS World News, and I'm here to help you improve your English pronunciation. This short lesson is only about 5 minutes, so you can easily fit it into your day, perhaps on your lunch break.
3: SBS Learn English helps Australians speak, understand and connect.
4: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृषाली को। मेरे पास आपके संदेश आने शुरू हो गए हैं। अब तक जेमी यू, हेमलता पुरोहित जी, नितिन गुप्ता और निर्मित और भवित मनसुखान

0: कार्तिकेन वेलु और संतोष गुप्ता जी मुझे सही जवाब भेज चुके हैं। सवाल था कि भाई है जवानी तो इश्क होना है फिल्म के डायरेक्टर कौन हैं। आप अपने सही जवाब, नाम और ईमेल एड्रेस के साथ 04397997767 पर हमको संदेश भेज सकते हैं और आप जीत सकते हैं इस मूवी का एक डबल पास। अब चर्चा करते हैं राजनीतिक दुख की, यानी पॉलिटिकल ग्रीफ। कैसा दुख है ये, इससे पोलराइजेशन कैसे हो सकता है? आज SBS एग्जामिन्स के इस अंश में इसी को समझते हैं अनीता बराज के साथ। आइए।
1: क्या आपके राजनीतिक विचारों ने आपके दोस्ती पर असर डाला है, या शायद आपको उस राजनीतिक पार्टी से जुड़ने में मुश्किल हो जिसे आप वोट देते थे? विशेषज्ञ इस भावना को पॉलिटिकल दुख कहते हैं और मानते हैं कि इससे और अधिक पोलराइजेशन हो सकता है।
2: Eventually, I became less willing to discuss these topics with people whose political views differed greatly from mine, because often those conversations don't lead to mutual understanding. What you receive instead is attack and denial.
1: Lee Junhao Ren, चीन से 3 साल पहले अपने पार्टनर के साथ एक समलिंग शादीशुदा जोड़े के तौर पर कानूनी सुरक्षा पाने के लिए ऑस्ट्रेलिया आए थे। ली ने SBS मैंड्रिन को बताया कि COVID-19 महामारी के दौरान शंघाई में लगे सख्त लॉकडाउन उनका वहां से निकलने के फैसले के लिए जैसे आखिरी वार बना।
2: Before that, we only thought that as sexual minorities, we faced oppression because of our identity. But then we realized that even if you're not a sexual minority, in China, you may still face oppression and insecurity in all sorts of ways. So it was that feeling that made us decide we had to escape immediately.
1: Li ne kaha ki is bare mein unka dukh bahut jatil hai. ये न सिर्फ उनके पॉलिटिकल विचारों से जुड़ा है बल्कि उनके देश और दोस्ती को खोने से भी जुड़ा है।
2: Whether or not I identify with China is now a very complicated issue for me. I still use Chinese and I still treasure many aspects of Chinese culture, language, art and history. But when it comes to contemporary China's social environment, political environment and its attitude toward queer communities, I genuinely find it very hard to identify with it.
1: तो SBS examines के इस एपिसोड में कुछ ऑस्ट्रेलियाई लोगों से उनके अनुभव सुनते हुए राजनीतिक दुख को हम समझ रहे हैं और SBS हिंदी पर मैं हूँ अनीता बरार।
3: Political grief, it's the emotional, it's the psychological, it's even the spiritual distress that we see when we see events and ideologies which are different than our own.
1: ये हैं RMIT University के School of Media and Communication की प्रोफेसर लरिसा हॉर्थ। उनका कहना है कि राजनीतिक दुख मीडिया और आमतौर पर समाज के पोलराइजेशन को प्रभावित कर रहा है। जितना अधिक हम दूसरी तरफ की बात नहीं सुनते हम उतना ही पट जाते हैं और आपको उस तरह के इको चैम्बर मिल रहे हैं। वामपंथी और दक्षिणपंथी एक साथ नहीं आ रहे।
3: So the more that we don't listen to the other side, the more polarized it gets. The more the algorithms keep pumping the kind of, you know, preaching to the converted. So the thing about political grief is that you're getting those kind of echo chambers happening. Somebody who's identified left, somebody who's identified right, they're not coming together in any way.
4: I think that divisiveness is now everywhere. We're losing focus on really important issues.
1: ये है तमारा। उन्होंने SBS examines को बताया कि उनका political दुख इस बात से है कि उनकी राय में लेबर और लिबरल समेत ऑस्ट्रेलिया की सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दृष्टिकोण खो रही हैं। पर्यावरण के विषय के लिए समर्पित तमारा पहले लंबे समय तक ग्रीन्स की वोटर थी, लेकिन आज उन्हें लगता है कि पार्टी देश के इश्यूज के बजाय विदेशों में होने वाली बातों पर अधिक फोकस कर रही है। इस वजह से उन्होंने इंडिपेंडेंट को वोट देना शुरू कर दिया है।
4: I understand my age is reflective of that too. You know, when you're at uni and you're like, yeah, but you start becoming older and certain, you know, things mean more to me. Education, environment, health, I believe pillars of a successful society. And I feel now it's more like them and us and them and us. And you just feel, what are you doing about issues here?
5: I suppose just the frustration of not having much success with such a minor party and finding it so hard to get anyone elected.
1: ये क्रिस हैं। उनकी पहचान को गुप्त रखते हुए ये उनका असली नाम नहीं है। उन्होंने SPS examines को बताया कि उनका political दुख क्लाइमेट के दुख से जुड़ा हुआ है और उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए कोई पार्टी ढूंढने में मुश्किल हो रही है. पिछले कुछ सालों से वो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में लेफ्ट की तरफ झुकते जा रहे हैं, यानी लेबर से ग्रीन्स, फिर छोटी पार्टी सस्टेनेबल ऑस्ट्रेलिया और अब इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की तरफ उनका झुकाव है.
5: And it's even hard enough just to get onto the electoral roll and get a party nominated sometimes, let alone actually getting people elected and getting media coverage, which we really struggled with as a minor party. So now I've kind of drifted across to independent sort of candidates wherever it's available. But I'd say I'm probably not entirely happy supporting them sometimes as well.
6: So we've seen really strong growth in votes for minor parties and independents in Australia.
1: Kate Griffith, Grattan Institute mein Democracy Program ki Deputy Director hain.
6: Around 2001, it was about 1 in 5 Australians voting for a minor party. And in 2025, that was up to 1 in 3. It reflects dissatisfaction with the major parties because we are seeing the first preference vote share there decline.
1: Griffith, Grattan Institute ki haliya report ki ek lekhak hain. रिपोर्ट है फॉर द पीपल फ्यूचर प्रूफिंग ऑस्ट्रेलियाज डेमोक्रेसी. रिपोर्ट में पाया गया कि ऑस्ट्रेलिया में पोलराइजेशन दूसरे लोकतांत्रिक देशों की तुलना में कम है. 10 में से सिर्फ एक ऑस्ट्रेलियाई का कहना है कि वे अलग राजनीतिक विचारों वाले व्यक्ति से दोस्ती नहीं कर सकते. वैसे देश का सोशल कॉम्पैक्ट दबाव में है.
6: People are feeling a declining sense of belonging, a declining sense of opportunity, and a growing sense of unfairness. These things combined suggest that there's some real stress in our community. They're the sorts of things that could lead down the track to sort of disengagement or discontent with the system itself.
1: Grattan report. ऑस्ट्रेलिया की डेमोक्रेसी को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए कई प्रैक्टिकल कदम सुझाती है. उनमें से एक है पार्लियामेंट का एक इंडिपेंडेंट रिव्यू, ताकि उन चीजों की पहचान की जा सके जहां ऑस्ट्रेलिया बेहतर कर सकता है. उदाहरण के लिए रिपोर्ट कहती है कि देश भर में अब इलेक्टोरल्स में वोटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन असमान है, और जहां देश की आबादी बढ़ी है, 1984 से प्रतिनिधियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया. एक और सुझाव है कि स्थानीय स्तर पर वोटिंग कानूनों में सुधार करना, ताकि अपनेपन की भावना पैदा हो सके.
6: I think where we really can improve is looking at our pathways to citizenship and not leaving people in limbo for a long time without a vote under a system that they then have no say in. And also about thinking through how we engage people, say, in local elections, even if they haven't yet got citizenship and can vote at the federal level. Local elections should be about residents having a vote and a say in their communities. So there's great potential to sort of offer more agency and give Australians more ways to have a voice and be heard.
1: ली ने SPS मेड्रन को बताया कि उनके पिछले अनुभव से उन्हें एहसास हुआ है कि वोटिंग अधिकार एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, यानी उनमें मुश्किल चीजों को समझने की क्षमता नहीं है.
2: They are genuinely connected to democracy, rule of law, multiculturalism, and mutual respect. After coming to Australia, I began to feel these values are actually woven into ordinary people's daily lives.
1: उन्होंने कहा कि हालांकि उन्हें अभी ऑस्ट्रेलिया में वोट देने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन वो वॉलंटियर कर और अलग अलग कम्युनिटी एक्टिविटीज में शामिल होकर अपनेपन का एहसास बना रहे हैं.
2: If one day I have the opportunity to become an Australian citizen, I would definitely treasure the rights to participate in public life, because I know that whether a society protects the rights of minorities can truly shape people's lives.
1: SPS examines के लिए लेरा श्वेत्स और लॉरियन जेन के इस एपिसोड को SPS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया अनीता परार ने. अधिक जानकारी के लिए www.sps.com.au/examines पर जाएं.
0: दोस्तों, इसके बाद मैं आपके लिए एक ऐसा गीत लेकर के आ रही हूँ जो है तो काफी पुराना, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम पर बेहतरीन तरीके से छाया हुआ है. इस गीत को सुनिए और फिर लूँगी एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद लेकर के आऊँगी ईंधन के कॉस्ट में यानी फ्यूल की कॉस्ट को किस तरीके से बचाएं, फ्यूल एंड फोकस हमारी खास पेशकश है। मेरे पास फिल्म के पासिस के लिए रीता दुआ जी और विनीत सेठ, जफर साहब और अनीता त्यागी जी के संदेश

आ गए हैं। सवाल बस इतना था कि है जवानी तो इश्क होना है फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है। आप डबल पास जीत सकते हैं, सही जवाब भेजिए 04397997767 पर अपने नाम और ईमेल एड्रेस के साथ। फिलहाल ये गीत जो कि आजकल बना हुआ है इंस्टाग्राम पर बेहद बेहद पॉपुलर।

0: अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS लर्न में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं। SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं।
1: SBS साउथ एशियन प्लेज

0: SBS South Asian. Your news from here and hits from home.
1: SBS Chill. पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें। SBS Chill सुनने के लिए SBS Audio ऐप पर जाएं। SBS Sport. खेल प्रेमियों के लिए नंबर एक जगह। साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, विश्व एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/sport पर जाएं।
2: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's Desi Dance Party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
3: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
4: पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर। देखिए सातों दिन 24 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें।
5: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृषाली को। हमारी चर्चा जारी थी कि है जवानी तो इश्क होना है फिल्म के पासेस पर। और दोस्तों मेरे पास आपके जवाब आ रहे हैं। मेरे पास विद्या जी का भी एक संदेश आया है जहां पर वे कह रही हैं कि ये गाना उन्होंने कल सुना था रेडियो पर जी। और इसकी रिक्वेस्ट भी हमको बहुत आती रहती है विद्या जी, और गाना आजकल चल भी रहा है तो इसलिए हम आज फिर से ले आए थे। लेकिन अगर आप कोई गीत सुनना चाहती हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे भी लाने के आपके लिए कोशिश करूंगी। और मेरे पास मीनाक्षी चोपड़ा जी का भी संदेश आया है कि उन्होंने सही जवाब भेजा है। क्वेश्चन चल रहा है हमारा गिव अवे का कि है जवानी तो इश्क होना है फिल्म के डायरेक्टर कौन है, आप हमें बताइए इसका सही जवाब 04397997 पर। संदेश में अपना ईमेल एड्रेस ज़रूर लिखें ताकि हम आपके पास आपका पास पहुंचा सकें। और अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में फ्यूल के बढ़ती कीमतों को लेकर के और ख़ास करके बढ़ तो रही है साथ में अनस्टेबल भी है, तो इस बीच ये सवाल ज़रूर आता है कि जो सस्ते पेट्रोल के ऑप्शंस हैं, जो सस्ते पेट्रोल के विकल्प हैं, उनमें से सही चुनाव कैसे करें। इसी पर फ्यूल इन फोकस का ये तीसरा एपिसोड आपके लिए मैं लेकर के आ रही हूँ। आइए सुनते हैं, बाकी के दो एपिसोड आप हमारे वेबसाइट पर सुन सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया भर में ईंधन की कीमतों में अस्थिरता के बीच वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गाड़ी में सस्ता पेट्रोल भरवाना सही विकल्प है। इसका जवाब काफी हद तक आपके वाहन के इंजन पर निर्भर करता है, क्योंकि हर तरह का ईंधन हर गाड़ी के लिए उपयुक्त नहीं होता। नमस्कार, मैं हूँ वृषाली जैन और ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड की मिनी सीरीज फ्यूल इन फोकस में आज बात करेंगे इसी पर। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पेट्रोल पंपों पर मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के अनलेडेड पेट्रोल, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और डीजल उपलब्ध होते हैं। पेट्रोल के तीन प्रमुख प्रकार हैं, 91 ऑक्टेन जिसे रेगुलर अनलेडेड पेट्रोल कहा जाता है, और प्रीमियम अनलेडेड पेट्रोल के 95

0: ओक्टेन और 98 ऑक्टेन विकल्प। दूसरे देशों में पेट्रोल पंपों पर दिखने वाले ये ऑक्टेन नंबर अलग हो सकते हैं क्योंकि उनकी गणना का तरीका अलग होता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ईंधन गुणवत्ता के लिहाज से समान स्तर के होते हैं। ये जानकारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एंटरप्राइज एजुकेशन के प्रो वाइस चांसलर और केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर जैक आमन ने दी।
1: So if you go to the US, for instance, you'll see low, medium, and high grade octane are traditionally labeled 87, 89, and 91. Here it's 91, 95, 98. In each case, it's simply how the government is choosing to calculate it. But the truth of the matter is, ultimately, these are internationally harmonized.
0: Octane rating ये बताती है कि कोई ईंधन इंजन के भीतर समय से पहले होने वाले कंबस्टन का कितना प्रभावी ढंग से सामना कर सकता है। विक्टोरिया के रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब यानी RACV में पॉलिसी प्रमुख जेम्स विलियम्स इस बात को आगे समझाते हैं।
2: So the octane number on the bows shows how resistant a fuel is to what they call engine knock. The higher the number, it means that the higher the quality of the fuel is.
0: जितनी अधिक ऑक्टेन रेटिंग होती है, आमतौर पर ईंधन की कीमत भी उतनी अधिक होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस या ईंधन की बचत हमेशा बेहतर होगी। RACV के जेम्स विलियम्स का कहना है कि अगर आप कोई हाई परफॉर्मेंस या स्पोर्ट्स कार नहीं चला रहे हैं तो अधिकतर लोगों के लिए 91 ऑक्टेन अनलेडेड पेट्रोल प्रति लीटर तय दूरी के हिसाब से सबसे किफायती विकल्प साबित होता है।
2: So if you're driving a conventional vehicle, say a small to medium SUV or a hatchback, you will get as much fuel efficiency out of 91 as you will 98. And of course, 91 should be cheaper. But that's not to say that the 98 is bad for your vehicle. It simply wouldn't be harnessed in a way that a high-performing vehicle would make the most or optimize that octane level.
0: दूसरी ओर यदि आपकी गाड़ी को अधिक ऑक्टेन वाले ईंधन पर चलने के लिए ही बनाया गया है तो उसमें 91 ऑक्टेन पेट्रोल का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है। आपकी गाड़ी के फ्यूल कैप के अंदर लगे लेबल या वाहन की मैनुअल में निर्माता द्वारा सुझाई गई ऑक्टेन रेटिंग की जानकारी दी गई होती है।
2: But if you do use the incorrect petrol type, this can affect not only your fuel efficiency and how far you can go with your vehicle, but also running costs and over time wear and tear and damage to your engine.
0: साथ ही कभी भी डीजल वाहन में पेट्रोल या पेट्रोल वाहन में डीजल नहीं भरवाना चाहिए। अगर आप डीजल वाहन चलाते हैं तो वाहन निर्माता की जानकारी से आप ये समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी बायोडीजल के अनुकूल है या नहीं। बायोडीजल एक नवीकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन माना जाता है। यदि आपकी गाड़ी इसके लिए उपयुक्त नहीं है तो सामान्य डीजल का ही इस्तेमाल करना बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E10 है। इसमें 10% एथेनॉल जो कि पौधों से तैयार किया गया ईंधन होता है और 90% अनलेडेड पेट्रोल मिलाया जाता है। इसकी ऑक्टेन रेटिंग अधिक होती है और पेट्रोल पंप पर इसकी कीमत भी अपेक्षाकृत कम हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इससे आपकी ईंधन लागत कम हो ही जाएगी। प्रोफेसर जैक आमन इसके पीछे की वजह समझाते हैं।
1: Adding a little bit of ethanol increases the octane rating, so for the same volume of fuel, you actually get a bit more punch out of the car. The only downside to putting E10 in is that you tend to go through fuel a little bit faster. So you're going to notice about a 3% increase in the amount of fuel you consume per 100 kilometers you travel, but it has a cheaper price and those two things equilibrate out.
0: Professor Aman ka kehna hai ki yadi aapko ye sunishchit nahi hai ki aapki gaadi E10 eendhan ke anukool hai ya nahi, to vahan nirmata ki manual dekhe ya unki website par jankari ko samjhe.
1: A good rule of thumb is that anything made in the past 20 years or so is going to be compatible with E10. Another rule of thumb, if the car has a carburetor on it, it's probably not going to be compatible with E10.
0: और अंत में ये याद रखना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले ईंधन की गुणवत्ता तय मानकों के अनुसार होती है। RACV की सलाह है कि वाहन चालक बेहतर कीमत के लिए अलग अलग पेट्रोल पंपों की तुलना कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग ईंधन विक्रेताओं के बीच गुणवत्ता में कोई

0: विशेष अंतर नहीं होना चाहिए। ईंधन के दामों की तुलना करने के लिए हमने चर्चा की थी हमारे पिछले एपिसोड में, यानी फ्यूल इन फोकस के एपिसोड 2 में, जिसको भी आप हमारी वेबसाइट पर सुन सकते हैं। बजट का ध्यान रखने वाले वाहन चालकों के लिए आमतौर पर सबसे किफायती विकल्प वही होता है जो वाहन निर्माता की आवश्यकताओं को पूरे करने वाले सबसे कम कीमत का ईंधन हो। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन की मिनी सीरीज फ्यूल एंड फोकस के इस एपिसोड को SBS न्यूज से आपके लिए लेकर के आई ज़ोए थामाडू और SBS हिंदी से वृषाली जैन। और दोस्तों, इसके बाद कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का, जिसके बाद चर्चा करेंगे इंडिजिनस टूरिज्म की। क्या है ये, कैसे है ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। बने रहिए SBS हिंदी पर। आपके गिव अवे पासिस के लिए जो जवाब हैं वो लगातार मेरे पास आ रहे हैं, जिनके नाम भी मैं पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बने रहिए SBS हिंदी पर।
1: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
2: अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS Voiceland चैनल 31 पर। SBS वर्ल्ड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से, देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 बजे SBS और SBS ऑन डिमांड पर।
3: इनसाइड SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
2: अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS लर्न में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं। आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार, देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS Voiceland चैनल 31 पर।
3: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
4: Learn to speak English. Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
0: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृषाली को और मेरे पास रिची सेठ, मनीषा पटेल, भाविक भट्ट, हेमलता पुरोहित जी का संदेश आया कि नमस्ते वृषाली जी, योर टीम वेरी नाइस प्रोग्राम, आई लाइक द सॉन्ग। थैंक यू सो मच हेमलता जी। और अमित राज भंडारी और सोहेल खोजा जी का संदेश आया है फॉर द डबल पास। आखिरी बार आज के शो में रिपीट कर रही हूँ सवाल को कि है जवानी तो इश्क होना है फिल्म के डायरेक्टर का नाम आप मुझे 04397997667 पर बता सकते हैं अपने नाम और ईमेल एड्रेस के साथ, और आप इस फिल्म को के डबल पास को जीत सकते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं, रिकंसिलिएशन वीक चल रहा है और ऐसे में चर्चा करते हैं इंडिजिनस टूरिज्म की, इंडिजिनस स्थलों के पर्यटन पर। इस खास ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड की अंश को लेकर के आ रही हूँ मैं आपके लिए SBS फ्लैशबैक में। ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन में दिलचस्पी रखते हैं, चाहे आप जंगलों में जाना चाहते हो, चाहे खाने के शौकीन हो या कला और विलासिता की चाह रखते हो, प्रथम राष्ट्र पर्यटन में आप हर तरह के रोमांच का आनंद उठा सकते हैं। धरती से इस 65,000 साल पुराने संबंध की यात्रा पर ना ही केवल आप प्रथम राष्ट्र संस्कृति को बेहतर समझ सकेंगे बल्कि प्रथम राष्ट्र अर्थव्यवस्था का भी समर्थन कर सकेंगे। टूरिज्म
5: हम ऑस्ट्रेलिया प्रथम राष्ट्र पर्यटन में बढ़ रही दिलचस्पी को पहचानते हुए उन यात्रियों के लिए खास पेशकश लाता है जो प्रामाणिक सांस्कृतिक अनुभव लेना चाहते हैं। निकोल मिशेल, डिस्कवर अबोरिजिनल एक्सपीरियंसेस यानी डी ए

0: ई की मुख्य सचिव है। डीएई टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया की एक इकाई है जो प्रथम राष्ट्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।
1: We had 969,000 international visitors who participated in Indigenous tourism experience while visiting Australia. But also pleasingly, we've seen an increase actually from 2019 to 2023 of 22% in our domestic travellers. So that's 1.185 million domestic visitors undertaking an Indigenous experience.
0: हर डीएई इकाई का अनुभव अबोरिजिनल या टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों द्वारा ही कराया जाता है। सुश्री मिशेल कहती हैं कि हर अनुभव इन खूबसूरत किरदारों के साथ जीवंत हो उठता है।
1: When you go on holidays, it's often the people that you meet that are in your memories that you hold forever. And that's really the case with our Indigenous guides. Often the travelers become so immersed, they're very hands-on participative experiences. You can be doing an art class, or you can be on the back of a quad bike on the sand dunes up in the Worimi area north of Sydney, and you're learning about culture.
0: क्या देश और संस्कृति की इस विविधता को अनुभव करने के लिए प्रथम राष्ट्र गाइड से बेहतर कोई मार्गदर्शक हो सकते हैं? दूर दराज के उत्तरी क्वींसलैंड में कुलू यलांजी पुरुष हुआन वॉकर वॉक अबाउट कल्चर एडवेंचर्स चलाते हैं।
2: I think if you're learning about Aboriginal culture and history, it's best to learn from Aboriginal people, to get Aboriginal people's side of the story, and to truly get an understanding of the land and sea that you're travelling on. No better way than from learning from the oldest living cultures that have occupied those areas since the beginning.
0: श्री वॉकर यात्रियों को पोर्ट डगलस के पास विशाल 135 मिलियन साल पुराने डैंट्री रेन फॉरेस्ट की यात्रा पर ले जाते हैं। वे इन यात्रियों के साथ अलग अलग पारितंत्र यानी इकोसिस्टम्स, इतिहास, परंपराओं, प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान साझा करते हैं और यात्रियों को

0: Hits from Home.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: के बारे में जानकारी देती हैं.
3: Really getting a big resurgence of interest in how and why these foods were so good for us, and it's being found now that they chose really nutritious food so people could survive out here. I think food is a great way of introducing country to people. People are really keen to try.
2: ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक संपदा की यात्रा करने के अनगिन मार्ग हैं. आपको जल यात्राएं मिल जाएंगी, रमणीय उड़ानें मिल जाएंगी, 4WD सफारी यात्रा का विकल्प भी है, और इन यात्राओं में कैंपिंग से लेकर विलास आवासीय व्यवस्थाएं सब उपलब्ध है. नॉर्दर्न टेरिटरी का काकाडू नेशनल पार्क अपने पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है. यह उन स्थानों में से एक है जहां रॉक आर्ट के सबसे अधिक नमूने पाए जाते हैं. अपने झरनों, वन संपदा, तैराकी तालाबों और समुद्री किनारों के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का किम्बली कई रॉक आर्ट गैलरियों का भी घर है. हमारे राष्ट्रीय पार्कों में दुनिया के सबसे पुराने पत्थर पाए जाते हैं जो करीब 20,000 साल तक पुराने हैं. इंडिजिनस गाइड आपको इन पत्थरों की सांस्कृतिक महत्ता भी समझा सकते हैं. मुरुकु आर्ट्स में मध्य ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज के समुदायों के 900 कलाकार सम्मिलित हैं. स्थानीय लोग देश में रहते हुए अपनी कला बेच सकते हैं, सांस्कृतिक वर्कशॉप और टूर आयोजित कर सकते हैं, और रेगिस्तान के प्राचीन तौर तरीकों को भी सबके साथ साझा कर सकते हैं. सुश्री मिशेल समझाती हैं.
4: They can get a source of income through the art that they're sharing by Mariku Art and also Mariku's dot painting workshops. You've got the community involved. That is conducted in the local Pitjantjatjara language. So it also helps in maintaining that language.
2: इंडिजिनस नेतृत्व में किए जा रहे इस पर्यटन से न केवल स्थानीय समुदायों का आर्थिक विकास होता है बल्कि सांस्कृतिक सततता भी बनी रहती है. हुआन वॉकर कहते हैं कि उनके सांस्कृतिक टूर उन्हें उनके देश में रहते हुए यात्रियों को अबोरिजिनल इतिहास और उनके पारिवारिक इतिहास से परिचित कराने का मौका देते हैं.
5: So rather than having to move away for work, it's allowed me to stay close to my family, close to my people, and connected to the land. So it's a great way to earn a living by sharing and teaching people about my heritage, and of course giving people a greater respect for the land, sea, and waterways where they visited.
2: ऐसी आम धारणा है कि इंडिजिनस संस्कृति केवल दूर दराज के इलाकों में ही मिलती है, लेकिन आप हमारे शहरी केंद्रों में भी सुंदर सांस्कृतिक कहानियां पाएंगे. बंजलंग पुरुष काइली आईवी प्रथम राष्ट्र कथावाचक के रूप में पर्यटकों को बुरावा एबोरिजिनल क्लाइंब एक्सपीरियंस के अंतर्गत सिडनी हार्बर ब्रिज के ऊपर ले जाते हैं. वे कहते हैं कि वे इस अनुभव को रिकंसिलिएशन क्लाइंब के तौर पर बरतते हैं.
6: Very much like a reconciliation climb. While I'm walking out along the bridge, walking up the bridge, I'll stop every now and then and point out things that make it a bit easier to tell tales. And then, like especially when that first fleet comes, it's pretty good to stop and point at the harbour where they would have gone and where the lands are, especially when I'm pointing out landmarks for the indigenous people. And of course, we got the photo spots.
2: इस क्लाइम के दौरान वे लोगों को प्रथम राष्ट्र लोगों के अहम स्मारक स्थान दिखाते हैं. वे उन्हें बताते हैं कि कैसे उनके पूर्वज उन जगहों पर रहते थे और कैसे उनके सामने उनका देश यूरोपियाई ताकतों के आने के बाद बदल गया. वे ऐसा कर न केवल अपने लिए गौरवान्वित होते हैं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के 500 से अधिक विविध सांस्कृतिक समूहों के लिए भी गर्व महसूस करते हैं.
6: It's also a good way for me to make sure I keep my memory fresh. It doesn't make me want to push further and find out more things to try and include more mobs, make sure I'm not messing up names. It's a very fulfilling experience. Like, I feel very happy to do it. I feel lucky to do it. And I just like the experience of educating people on Indigenous stuff.
2: Melbourne ke beecho beech, aap Yarra Nadi ke kinare Bira Rang William Walk par एबोरिजिनल कला की प्रदर्शनी का गाइडेड टूर भी ले सकते हैं. इस टूर पर आप सुन सकेंगे कि कैसे समय के साथ कुलीन लोगों के लिए भूमि और उसकी अहमियत बदली है. और तस्मानिया में आप एबोरिजिनल टूर का लुत्फ निपालूना हॉबार्ट में उठा सकते हैं. 90 मिनट की ये प्रदर्शनी और वॉक आपको स्थानीय पलाव

0: वह लोगों की उदास लेकिन प्रभावित करने वाली कहानी सुनाएगी। निकोल मिशेल कहती हैं कि ऐसे इंडिजिनस अनुभवों से दोनों ही प्रथम राष्ट्र और गैर अबोरिजिनल लोग एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक ज्ञान साझा करते हैं।
1: It's also a strong driver for reconciliation. People are learning and understanding about the many different cultures in Australia, and that benefits the traveller. But in terms of the community, you're really bringing an opening to the community, firstly, for them to tell their story. One of the guides actually mentioned to me, we have to share culture to keep culture.
0: ऑस्ट्रेलिया में बसने के लिए अहम जानकारी के लिए फॉलो कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के पॉडकास्ट को, और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें ईमेल भेजें australiaexplained@sbs.com.au पर। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश को आपके लिए प्रस्तुत किया SBS न्यूज से मेलिसा कॉम्पनोनी और SBS हिंदी से वृशाली जैन ने। हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर
2: और इसी के साथ मेरे जाने का समय हो गया है। आपके लिए एक प्यारा सा गीत मैं लेकर के आ रही हूँ और इसी के साथ जा रही हूँ। मेरे पास ईवा लालची का संदेश आया है और गुरप्रीत कालसी जी का संदेश आया है।

जी, तो योगीन राणा जी ने मुझसे पूछा था क्यों नहीं मेरी आवाज कुछ नासाज लग रही है। मौसम का असर है, कुछ कुछ दिन होते हैं हम नहीं होते अपने उतने 100% पे, लेकिन आपने पहचाना, उसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ। सही हो जाएगा, जो भी है सब बढ़िया है। आप सब अपना बेहद ख्याल रखिएगा और देखिए यही एग्जाम्पल है आपके लिए भी, कोताही मत बरतिएगा। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।

0: Your news from here and hits from home. SBS South Asian.
1: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुने गूंजने लगती हैं।

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

0: SBS South Asian.
1: अरे अल्फा बीटा गामा थीटा, तेरे भाई ने सबको पीटा
2: भगा भगा के।
1: आपके लिए आए स्पेशली।
2: हाँ जी हाँ जी।

गाओ हरे ला ऊंचा पाओ यू पटका है ये देसी का मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो।

0: Bollywood.
1: I love Bollywood music.
2: Kicking the morning off the right way. An hour of the best in Bollywood hits. Starting now. It's the Bollywood Session on SBS South Asian.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: The Bollywood Session on SBS South Asian.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बचा

0: SBS South Asian.
1: गोकुल की राधा चली
2: ओ चली ओ चली
1: गोकुल की राधा चली
2: ओ चली चली चली
1: गोकुल की रा